अंगीकार यहु करे तेरा कारज सब सुवारणा सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहु हर नाले साचे साहेब क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सात सुख मन आए वसया।

कोई रुंदा हस्सा आया ही दस का कोई रो रहा है वे मुझे चुप कराया कभी कभी को रोंदा हसाया ही दस खां कभी को रुड़दा बचाया ही दस खां कभी कोई टिठा उठाया ही दस खां कभी कोई भुखा रजाया ही दस खां घर दे बाहर लगी होवे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी तस्वीर ते घर दे मूहरे कोई प्यासा मुड़ जाए कदी कोई रोंदा हसाया ही अपने आप से सवाल मन में सवाल करे कदी कोई रोंदा हसाया ही दस खां कदी कोई डुबदा बचाया ही दस खां ओ कदी कोई टठा उठाया ही दस खां कदी कोई भुखा रजाया ही दस खां जे हथी नहीं किसे दा फट सीता जे हथी नहीं किसे दा फट सीता निरा निरी माड़ा फेरी ते कख नहीं ये सेवा नहीं की थी कख नहीं किया फिर सुनना जी कभी को रोंदा हसाया ही दस खां कभी को टठा उठाया ही दस खां वो कभी को रुड़दा बचाया ही दस खां कभी कोई भुखा रजाया ही दस खां जे हथी नहीं किसे दा फट सीता निरी माड़ा फेरी को देखकर उम्र दाढ़ी सफेद होने लग गई बुजुर्गी आने लग गई सारी उम्र पर गुनाह किया तो बात जाकर माला छोड़ गया ढलती उम्र को देखकर माला को थाम लिया गुनाह बेशुमार किए नाम गिन गिन के लिए गुनाह बेशुमार किए नाम गिन के लिए जे हथी नहीं किसी का फट सीता मेरी माला

जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मन उहाना तेरे संग सहा। जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मन उहाना तेरे संग सहा। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन

जह मात पिता सुत मीत ना पाई, मन मुहाना तेरे संग सहा। चंगे आईया बुरे आईया।

जो मर मिटते हैं मुल्को कौम की खातिर सरे मैदान, शहीद जो मर मिटते हैं मुल्को कौम की खातिर सरे मैदान, फजीलत उनकी होती है इबादत उनकी। जो मर मिटते हैं जेड़े आपा वार गए मुल्क लई कौम लई, जो मर मिटते हैं मुल्को कौम की खातिर सरे मैदान, फजीलत उनकी होती है इबादत उनकी होती है। जो इंसान को बंदे खिदमत खलके खुदा में काम आते हैं, सेवा कर देने हमेशा लब पे इंसान के हकायत उनकी होती है, लोगों की जबान को उन्होंने का जिक्र होता है। वो लम्हे जो कभी याद इलाही में गुजरते हैं, जेड़े पल घड़ियाँ याद इलाही में सिमरन कर दें गुजर जाते हैं, विदाए जिंदगी के बाद कीमत उनकी होती है। जेड़े बिन चाकड़ी पल सिमरन कर दें गुजर गए जिंदगी तो बाद उन्हों की ही कीमत हो समझ। जो मर मिटते हैं मुल्क कौम की खातर सरे मैदान, फजीलत उनकी होती है इबादत उनकी होती है। जो इंसान खिदमत खलके खुदा में काम आते हैं, हमेशा लगते इंसान की हकायत उनकी होती है। वो लम्हे जो कभी याद इलाही में गुजरते हैं, विदाए जिंदगी के बाद कीमत उनकी होती है। जिड़ा समा सिमरन कर दें हर जस कर दें गुजर गया, जिंदगी के बाद कीमत उन्हों की हुई है। वही लेकड़ियाँ लेखे बच्च पहन गए आप सारे ने प्रमाण दिता से चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदूर करनी आपो अपनी से मेरे के दू आखो जी जी नाम ते आया गए निशरत का नाम ते मुख उजले केती छुट्टी नाम सतों का शब्द है हर जस रेम गाय लै जो संगी है तेरो अवसर बीते जा रहे जिंदगी एक एक छीन करके जा रही है संभाल लै। बाणी गुरु जी अंदर अंत दफा ऐसिया तुक आई सतगुरों ने बाणी विचारण की समा अजाई जा रहा है दिन ते पहर पहर ते करियां आव कटै तन छीजे दिन पहरां विच पहर घड़ियां विच बदल बदल के गुजरते जा रहे हैं। मैं याद है संस्कृति अंदर जी संस्कृति की बाणी अंदर एक श्लोक है अचेत बूढ़ा नह जानत कटंत सासा नित प्रति संस्कृति की बाणी अंदर सतगुरु ने कर्म फरमाई की वचन चाह रहे अचेत बूढ़ा नह जानत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया जिमें कपड़ा छिजदा है ना यह काया छिजदी जा छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या रास्ते इसलिए हर जस रेमना गाए लै पर सभी की दशा बुजुर्गी आ गई तो उस वेले पता लगा कि जिंदगी तो अजाई गुजर गई पर एक चीज ये माँ के पेट चो पैदा होया तो एक चीज ये पेट चो पैदा हो केड़ी तृष्णा तृष्णा बुजुर्गी च जाके ये तृष्णा अगे लभ अगे लोभ अगे हथ पै जोड़ता आखदा है सुनना जी तन के बल में अब पीठ दई शरीर की शक्ति भी हुण ते पिट दे गई शरीर च नातवा हो गया तन के बल ने अब पीठ दई अर हार चले दृग बाल संगति जेडे जन्म समय नाल आए सन ना वो भी मैनू छड़ के चले गए कौन सुनना कट गया नेत्र अखां जोत कट गई जबान थिड़कन लग गई
तन के बल में अब खींच गई। वेदांत की जो व्याख्या करते हैं वो इस तरह का जिक्र करते हैं, शरीर शक्ति ग्रहित हो गया, जेड़े बचपन से पैदा होंदिया नाल आए सन वो छड़ के चले गए। तन के बल में अब पीच दई अरहार चले दृगबाल संगाती, तज के ए लोक बिखे हमको चल आप गए सो लोक संजाती। और की होया जी, जग मीत सखा मुख फेर गए। जिहड़े मेरे बहुत मित्र प्यारे रिश्तेदार सन वो भी हम साथ चले, जग मीत सखा मुख फेर गए। अर सेवक हूं ना पुछे मम बाती, जेड़े मेरे अपने नौकर चाकर सन वो भी मेरी गल नहीं सुन। अर सेवक हूं ना पुछे मम बाती, मम आह पलांगम हे कृष्णे, इन्नी दुनिया मैनू मेरे शरीर दे अंग रिश्तेदार सेवक छड़ गए। हे कृष्णा मम आह पलांगम हे कृष्णे, मैं तेरे अगे एक बेनती कर दी कि तू क्यों नहीं छड़ के गई बुढ़ापे विच जाके। मम आह पलांगम हे कृष्णे, एक तू मम संग रही दिन रात, तू दिन रात बढ़ती रही मेरे नाल, बाकी तो मैं छड़ गई। अवसर बीतो जात है कहो मामले में, सतरों का तिलंग राग का शब्द पहला ही शब्द है, यक अरस गुफ्तम पेश दे उसका प्रमाण तक से कुछ जिक्र आया। जन पिसर पदर बरादरा कसनेस दस्तम भी आखिर व्यफतम कसना दारत चू शगा तो। जिन्हें रिश्तेदार ने वो भी छड़ गए, पर मम आह पलांगम हे कृष्णे, एक तू मम संग रही दिन रात। दिन राति कृष्णा में गुजर रहा है, पर सतगुरु ते आखदे ने कि शब्द जा देते आखो जी दिन राति अरत निमख ना कीजे ढीला। एक निमख भी ढिल नहीं वरतनी चाहिए किस चीज़ लई, वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु। दिन राती आराधो प्यारो, निमख ना कीजे ढीला, संत सेवा कर पावनी लाइए, त्याग मान हठीला, मोहन प्राण मान रंगीला, वास करो पियर के संगे पेट मोहो मन लीला। अर्जस रेमना गाय ले जो संगी है तेरे, अवसर बीते जात जिंदगी किमें गुजर रही है, बाणी गुरु जी अंदर शब्द आया किमें गुजरी जिंदगी। दस बाल तन किसी की उम्र फर्ज कर लो 100 साल है ते दस नाल डिवीजन दे जाओ आप ही पता लग जाएगा किमें गुजरी। दस बाल तन बी सरवण तीसा का सुंदर कहा, दस बचपन च गुजर गए, अगले दस जवानी दे ते 30 साल का पूरा खूबसूरत। दस बाल तन बीस रमन तीसा का सुंदर कहा, 40 ही पुर होए जिसने 40 का होया नहीं तो हम पूरा हो गया। मेरी बेनती है जिहड़ी चीज़ जदों पूरी हो जाए ना अगले बिंद झटो कटन लग पी, कटन लग पी। इस सूरज चढ़िया सी ना 12 बजे पूरा फुल ब्लू पे चमकिया, पर अगले हर सैकेंड कटदा कटदा शाम में गुरूब हो गया। पूर्णमाशी का चंद्रमा पूर्णमाशी की रात में पूरा चमकिया, पर कटदा कटदा मस्या विच तब्दील हो गया। जिहड़ी चीज़ पूरी हो जाए अगले बिंद छत को कटन लग पैंदी किवें जी। दस बाल तन बीस रमण तीसा का सुंदर कहा, 40 ही पुर होए कटन लगा। 85 पग खिसे 50 साल च पैर डगमगाउण लग पे, 40 ही पुर होए 85 पग खिसे 60 के बूढ़े पा। 7वें साल च ओल्ड एज शुरू हो गई, 85 पग खिसे 60 के

0: सठी के बुढ़े पाया सत्तर का मत ही असिहा का व्यवहार न पा नब्बे का सेजा सनी
1: सेजा सनी दो अक्षर जोड़ के सतरों में बढ़ते सेज प्लस आसन आप नब्बे का होके होने बेड जो गई हो गया सेज जो गई हो गया
0: नब्बे का सेजा सनी मूल ना जाने अपल
1: मूल है कितों उपजे कह रहे
0: कह माए समावा
1: ओ, पैदा कितने हुए कितने बचपन जवानी गुजारी ते हुण अगे समाई कितने होनी

हम भय काल को तुम कर कौन हवाल, तेरे कर दर की हाल है अखिल भी हम कर बसी खाल। पूर्वला बीजिया है वो फलदा क्या है, अगले लिए कुछ बीजिया है बाणी गुरु जी का हूँ वत्ते हर नाम में बीजियो अगे भुखा क्या खाए। जे हूँ भी मनुखा जन्म विच आके भी नाम नहीं बीजिया, नाम का व्यापार नहीं किया, अगे जाके खाना की है, हूँ तो पिछली कमाई में चल गया, अगे जाके खाना की। एक शब्द बार बार आप पिछले समय दौरान पाठ किया, कई प्राप्त मानव दे हरिया गोविंद मिलन की ये तेरी भैया, अवर काज तेरे कितने ना काम, मेरे साथ संगत आज के बिना बीजी हम पिता से किसने थोड़ा हो रहा ग्रहण तक करना हम पर बासी खाते। इस शब्द अंदर का ही अक्षर आया बरिया है, बरिया मतलब बारी कर, ये बारी मिली है 84 लाख जूना बच्चों जिस विच नाम सिमर के ते मुक्त जीवन मुक्त हो सकते हैं। पर मिसाल वजों बेनती कर रहे हैं, पंजाब तो आए हैं, बहुत बेनती खेती करती आई जिमीदार करती है, झोना बीजिया चावल झोना बीजिया है तो झोने का मैं सुनिया है कि पानी बहुत लगता है, नक तक डुबा रहा है पानी में, फिर झोना होंगे पर करिए कि मीह प्या नहीं, पानी 300-200 फुट जमीन तो थले चला गया, ट्यूबवेल ड्राई हो गए सूख गए, पानी मिल नहीं गया तो झोना खराब हो जाएगा बिना पानी तो, फसल नहीं हो पाएगी। पर होया कि मिसाल के जो सरकार दे मन मेर उन्हें आख्या इन्नी तो इन्नी तरीक तक नहरां विच पानी छड़िया जाएगा, जिमीदार अपनी वारी सिर पानी ला लें वारी सिर, तो जिहड़ा उस वेले भी वारी नहीं ना संभालदा जितन उहदी पानी लाउण दी वारी सी उदन भी वह सुता रह गया, तो फिर वह रीतो घर देखे वारी निकल गई पानी ला ना सकिया, झोना वाहुणा पिया हासिल कुछ ना हो क्योंकि वारी नहीं संभाली, ये वारी मिली है, ये वारी मिली है किस वास्ते, वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु कर। फिर आखो जी कई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, वारी संभाल लीए किवें जी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का फरमान है जय जावंती राग, राम सिमर ये है तेरे काज है, माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है, सुपने जो धन पछाण काहे पर करत मान, बारू की पीत जैसे पीत दीवार बारू रेता, बारू की पीत जैसे वसुधा को राज है, नानक जन कहत बात बिन सजै है तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल तैसे जाग आज। जे कोई आखे कि जी उमरा गुजर गई है नाम तन इकत्र नहीं कर सके, बासी खात हैं साडा भी कुछ हो सकता है, तो भाई गुरदास जी आखन लगे बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जी। किवें भाई साहब ने मिसालां दित्तियां जी, तीन आखन लगे बेड़ी विच समान लेके जा रहे हैं, हड़ आ गया ते उस वेले बेड़ी विच जो सवार ने मला है वो थोड़ा जा यतन करे ते डुबदी बेड़ी विचों जो बचा सकता है वो बचा ले, जे ना हिम्मत कीती ना उत्तम कीता ते जो डूबेगी कश्ती तो डूबोगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी। भाई गुरदास जैसे नाव बूढ़त से जोई बचै सोई पलो, डुबदी बेड़ी विचो जो बचा लिया ओही लाहेदा, नहीं ते बूढ़ गए पाछे पछतावा रहे।
जैसे नाव बूढ़त से जोई बचे सोई पलो बूढ़ गए पाछे, जे उत्तम उपराला ना कीता फिर ते बेड़ी विचों कुछ ना बचा सके, ते सारी बेड़ी डुब गई साजो समान से। जैसे नाव बूढ़त से जोई बचे सोई पलो बूढ़ जाए पाछे पछतावा रह जाए। दूसरी मिसाल, जैसे घर लागे आग किसी दे घर नूं अग लग गई, टब्बर दे जी रल के कुछ उद्दम करन वेला संभाल लें तो उस लगी हुई अग विचों जो कुछ बचता है बचा लें, वो बच गया जे उद्दम ना किया तो सारा सड़ के सुआह पे हो जाए। जैसे घर लाग गए आग जो भी बचे सोई पलो, ये बड़ा अच्छा लिख गया है मैंने भी पास लगा। जैसे घर लाग गए आग जो ही बचे सोई पलो, जर बुझे पाछे कछे बस ना मिसाते, जे उद्दम ना किया लगी हुई अग विचों कुछ बचाउन दा ते सारा कुछ सर ते सवाह हो जाए। तीसरी मिसाल, जैसे चोर लागे जागे जोई बचे सोई पलो, कर दे जी दिन दा कम काज पिट पिट करके थक के सुते पए ने, चोर आ गए पर वेले सिर कोई जाग गया, उसने बाकियां नूं भी जगा दिता ते सारयां ने रल के घर लुट होण तों बचा लिया, चोरी होण तों बचा लिया। जे वेला ना संभाल दे ते सवेरे भाई गुरदास जी ने अखर वरत्या रीतो, सिंधी बोली दा अखर है रीतो, घर देखै उठ परात है, वेला नहीं संभालिया ते सवेरे उठ के देखै चोर सारा कुछ ही लुट के लै गए, क्योंकि वेला नहीं संभालिया वेले सिर जागे नहीं। जैसे चोर लागे जागे जोई बचे सोई भलो, सोए रहे रीतो घर रीतो भाव खाली कर दे, रीतो कर देखै उठ परात है, तैसे अंतकाल गुर चरण शरण आवे। जे बचपन अजाई चला गया जवानी अजाई चला गई ते हाले हमने रेंदी स्वासां दी पूंजी संभाल लीए ते भाई गुरदास जी कहंदे ने बहुत कुछ हो सकता, तैसे अंतकाल गुर चरण शरण आवे। गुरु चरण शरण आउण दा की है, संगत विच आ के सिमरन कर लवे, घर बैठा सिमरन करे, जदों समा लगे वाहिगुरू वाहिगुरू नाम दृढ़ कर लवे, तैसे अंतकाल गुर चरण शरण आवे पावे मोख पदवी। हाले भी मोख की प्राप्ति कर सकता है, अगले तीन अखर बहुत कमाल दे ने, जिन्हें हाले भी वारी नहीं ना संभाली। भाई गुरदास जी कहंदे ने ना तर बिल ला, वो फिर बिल लाउंदा है, इसलिए इंग्लिश टेक सेंटेंस है मेक मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट, जिहड़ा वर्तमान है ना इन्हें संभाल लीए ताकि असी ना ये कहिए हम कर वासी था ना, हुण वक्ता है हर नाम बीज लीए ताकि अगे जाके भुखे ना रहना। तो कहते कि समाप्ति है सब आखो जी।

भी रोज विनती करता हूँ। इस दो हफ्ते के कीर्तन दौरान मेरा तो वैसे भी करना भी नहीं सी बनी कोई कारण, पर जिन्हें संतान में सी कि शायद राग आपको कीर्तन समझना मुश्किल हो जाएगा होगा, पर वो गलत ख्याल ख्याल गलत हो गया। संगत ने देखो पक्की ताल है पर आप सहज ही सतगुरों की कृपा न गा रहे हैं, थोड़ा जहा यत्न करिए कि सतगुरु कृपा करें कि आप सारे रल के औखी औखी ताल औखे औखे राग भी गा सकेंगे। जे थोड़ा जहा यत्न करिए, थोड़ा जहा यत्न करो, सब आपको देखो चपताल ताल है, कल्याण राग है, सब आपको जी।

जादू जादू मेरे वल है तांगा को चंदा तू सब कुछ मैनू सौंपया जानते आ बंदा लक्ष्मी तो

सारे ने रल के तीन ताल अंदर भी शब्द गाए, रूपक अंदर भी गाए, चप ताल भी गाई। अज क्योंकि आपके दास ने फिर वापस चले जाना है, अज रल के अस्थाई गा ली एक बारी पड़ताल राग नट नारायण।

जी कोशिश करिए ना कि पुरातन कीर्तन दोबारा रिवाइव हो गया है, काफ़ी तरक्की हुई है, और ज़्यादा हो सकता है। एक बार इस सब वक्त क्योंकि स्थाई दर अपो संचारी ज़्यादा उच्च दास कह के आएंगे, आप सारे ने बराबर साथ देना, सब आखो जी।

बहुत ना चार वर्ण चौहा के मदन खट दर्शन कर तली रे सुंदर सुगण स्वरूप से आने पांचों ही मोह छली रे जिन मिल मारे पंच सूर भी ऐसो कौन बली रे जिन पंच मार विदार

नीच कुला जोहलारा अयोगुनी गहीरा रवदास टमंता टोरनी इन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया।

हमें कर्म कमाए, हमें ई बंदना फिर जुनी पाए, हमें किथो उपजाए कित संज में जाए, हमें एहो हुक्म है पया किरत फिराहे, हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे।

ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्रह्मण है, कत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं।

थर्मण हुआ नाव खुदाई अलहो भया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमन किया चारे, वेद होए सच्यार पढ़े गुण है तिन चार विचार।

थोड़ी चिता अंदर सबको एक नदरी हेठ चलाएंदा, आप पे देवड़ी आई आप पे कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरा सिर तंदे लाएंदा, नदरू पट्टी जे करा सुल्ताना का।

को हथी जाए सटिया किस एहो लगा दोख अन देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित पापी स्यो तन कढ़िया थुका पैया तित जित मुख नाम ना उचरै बिरनावे रस खाए

आप कराए साक्ति फिर आप कराए मात, एक नाग गली जंजीर एक टूरी चढ़ा विशियार, आप कराए करे आप कैसे करी पुकार, नान करना जिनकी फिर तिसी करनी सार।

0: पाइए साध के संग।
1: रह मार के गन जाहे न कुसा,
0: हर का नाम हुआ संग तुसा।
1: रह पैटे महांद गवारा,
0: हर का नाम संयुतियारा।
1: रह पान तेरे को ना सियानू,
0: हर का नाम ते नाल पिशानू।
1: रह महा प्यान तब तब काम,
0: ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम।
1: जह त्रिखा मन तुझे अकारखे,
0: ते नाम कर हर अमर बबरखे।
1: भक्त जना की वर्तन नाम,
0: संत जना के मन विश्राम।
1: हर का नाम दास की ओट,
0: हर के नाम उदरे जन कोट।
1: हर जस करत संत दिन रात,
0: हर हर औखद साध कमात।
1: हर जन के हर नाम निदान,
0: हर ब्रह्म जन की नो दान।
1: मन तन रंग रते रंग एके,
0: नानक जन के वजित बिके।
1: हर का नाम जन को मुक्त जोगत,
0: हर के नाम जन को तृप्त भुगत।
1: हर का नाम जन का रूप रंग,
0: हर नाम जन का परे न भंग।
1: हर का नाम जन की वडियाई,
0: हर के नाम जन शोभा पाई।
1: हर का नाम जन को भोग जोग,
0: हर नाम जप कृष्ण आहि
1: योग। जन राता हर नाम की सेवा,
0: नानक पूजे हर हर देवा।
1: हर हर जन के मालिक जीना,
0: हर तन जन को आप प्रभु लीना।
1: हर हर जन के ओट सतानी,
0: हर प्रताप जन अवर न जानी।
1: पोत पोत जन हर रस राते,
0: सुन समाध नाम रस माते।
1: आठ पहर जन हर हर जपे,
0: हर का भक्त प्रगट नहीं छपे।
1: हर की भक्त मुक्त वो करे,
0: नानक जन संग केते तरे।
1: बार जातो फट को नाम,
0: काम देन हर हर गुण गाम।
1: सबते उत्तम हर की कथा,
0: नाम संत दर्द दुख लता।
1: नाम की महिमा संत हृदय वसे,
0: संत प्रताप दुख सब नसे।
1: संत का संग बड़ भागी पाई,

कवन मूलते कवन दर्शाने गर्भ में जिन्हें वाया पजोवन भोजन सुख सूद मुख प्याव बैठ को दैन बख्श लियो तो नानक सीजे सत प्राण की कृपा संग हसे सुखदाई पावन पाव का मुला सकल सामग्री संग साथ बसा किसी त्याग और संग रचना नान काढ़ लियो प्रभापे तिसो प्रीतन करे द्वार तासो मूढ़ा मन नहीं लावे तासो अंधा जान

0: दान तान कुटुंब सबाय
1: मिथ्या होमे ममता माया
0: मिथ्या राज जोवन तन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रात हस्ती अस वस्त्र
1: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
0: मिथ्या त्रोह अभिमान
1: मिथ्या आप सुपर कत गमान
0: अस्त्र भक्त साध की सरण
1: नानक जप जप जीवे हर के चरण
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा

0: वसे निरंकार,
1: जिसकी सीख करे संसार,
0: जो तुम पाने दिन प्रभ जाता,
1: नानक उन जन चरण पराता,
0: करो बीनती पार ब्रह्म सब जाने,
1: अपना किया आपे माने,
0: आपे आप करतन बीरा,
1: किसे दूर जनाब किसे बुझावत नेरा,
0: उपाव स्यान सगलते रहत,
1: सब को जाने आत्म की रहत,
0: जिस पाव

0: जय प्रसाद सच अमृत खाए
1: निष्ठा कर को रख मन माए
0: जय प्रसाद सुगंध तन लाव है
1: निश्चो से मृत परम गत पावे
0: जय प्रसाद बस है सुख मंदिर
1: इसे ध्याय सदा मने अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैस सिमरो तिस रचना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याय ध्यान जो
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है
1: इसे ध्याय का करवावे
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ करता
0: जय प्रसाद तू सबको माने
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: जय प्रसाद रहता धर्म
1: मान सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जप्त दरगह मान पावे
1: नानक पासे की कर जावे
0: जय प्रसाद आरो कंचन देही
1: देव लावो तिस राम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मान सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके
1: मान सभी पर ठाकर प्रतावे
0: जय प्रसाद तुझको न पहुंचे
1: मन सास सास सिमरो प्रभु
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे
1: नानक ताकि भक्त करे
0: जय प्रसाद आपूखन पहरी जे
1: मान तिस सिमर को आस कीजे
0: जय प्रसाद अशुभ हस्त असवारी
1: मान तिस प्रभु को कभु न बिसारी
0: जय प्रसाद बार मिलक तना
1: राग करोए प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाए
1: उठत बैठ सात से त्याई
0: तिसे त्याई जो एक अलख है
1: इहा उहा नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान
1: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: जिस प्रभु सास सास चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सुप्रण सिमरो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सुप्रण सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने कर नाद
1: जय प्रसाद पीके विस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे वसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद सपूरण फल है
0: जय प्रसाद परम कत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लाग हो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार
1: इस प्रभु को मूल न मनो विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप
1: हे मन मूल ताको जाप
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: इसे जान मन सदा हजूरे
0: जय प्रसाद तू पावे साच
1: हे मन मेरे तू दास राज
0: जय प्रसाद सब की गत होए
1: नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपे सो नाओ
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ
0: प्रभु कृपा ते होए परगास
1: प्रभु दया ते कमल विगास
0: प्रभु सु प्रसन्न बसे मन सोए
1: प्रभु दया ते मातु तम होए
0: सर्व निदान प्रभु तेरी माया
1: आप कछु न किन्हु लया

0: साध के संग मुख उज्जल होत,
1: साध संग मन सगली खोत,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग परटे सो ज्ञान,
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होतन मेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा प्रभाए समानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर खुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पंचा,
0: साध संग हुए सब की रे।

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप
1: जैसे जन्मे कमलेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोक
1: जैसे सूर सर्व को सोक
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक
1: जो बस्ता को खुदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का एह गनाओ
1: नानक जो भाव का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास
1: जैसे तारे ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पै
1: नानक जिन प्रभाव करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब परम्या
1: ब्रह्म ज्ञानी के कछु बरा न पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक परास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार माहा
0: ब्रह्म ज्ञानी के इतना ही धंधा
1: ब्रह्म ज्ञानी के तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के हुए सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के इक्के रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अमृत त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बालक बजाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए अध्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवनी
0: माता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार

स्थूल नानक उस पंडित को सदा देश जपे जपे को नाम सार संग पावे जन कोए पस प्रेत मुक्त पात्र को तारे कल्याण रूप मंगल गुण गाम नानक जिस मिले जिस लिखिया तुर करम तिसका नाम सत रामदास दास संतन पाए तिन पाया सो दास रखे परवान तिसन दास को सब सोची परे ऐसी जुगत नानक रामदास जीवन मुक्त सो कहावे सदा नंद तै नहीं वियोग तैसा अमृत तैसी बिल खाटी तैसा रंग तैसा राजान नानक उपर कहिए जीवन मुक्त जिर जिर का रखे तैसा तिन नाम प्रभावे सोई फन होगा

0: कई कोटाचार्यो हरी,
1: कई कोट पै तीर्थ वापसी,
0: कई कोट मन पर मैं लापसी,
1: कई कोट वेद के स्रोते,
0: कई कोट तपीश्वर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान तारे,
0: कई कोट तप काम विचारे,
1: कई कोट नवतन नाम त्यावे,
0: नानक हृदय का अंत न पावे,
1: कई कोट पै अवमानी,
0: कई कोट अंधा ज्ञानी,
1: कई कोट कृपण कठोर,
0: कई कोट तपि आत्म निरोर,
1: कई कोट पर दर्भ क्यों हिरे,
0: कई कोट पर दर्भ न करे,
1: कई कोट माया शर्म माहे,
0: कई कोट परदेश पर माहे,
1: जित लाभो तीर्थ ते लगना,
0: नानक करते ही जाने करता रचना,
1: कई कोट सद जति योगी,
0: कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्व पाए,
0: कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए,
1: कई कोट पवन पानी वे संतर,
0: कई कोट देश मंडल,
1: कई कोट सस्या सूर नक्षत्र,
0: कई कोट देवता इंद्र
1: सचर, सगल समग्री अपने सूत धारे,
0: नानक जिस
1: कई कोट राय ताम साकत,
0: कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र,
1: कई कोट किए रतन समंद,
0: कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट किए चर जीवे,
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे,
1: कई कोट जख नर पसाच,
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मरगाच,
1: सब ते नेरे सब हुते दूर,
0: नानक आपरे हरिया भरपूर,
1: कई कोट पताल के वासी,
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे,
0: कई कोट बोधोनी फिरे,
1: कई कोट बैठत ही खाए,
0: कई कोट काले थक पाए,
1: कई कोट किए तनवंत,
0: कई कोट माया में चिंत,
1: जय जय पाणा तै तै रखे,
0: नानक सब कुछ प्रभु के हाथे,
1: कई कोट पाए वैरागी,
0: राम नाम सब जन लब लागी,
1: कई कोट प्रभु को खोजंते,
0: आत्म में पार ब्रह्म लहंते,
1: कई कोट दर्शन प्रभु प्यास,
0: तिनको मिलियो प्रभु अविनाश,
1: कई कोट मांगे सतसंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न,
0: नानक तेरा सदा धन धन,
1: कई कोट खानी अर खंड,
0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड,
1: कई कोट हुए अवतार,
0: कई ज्योत की नमस्कार,
1: कई बार पसरो पसार,
0: सदा सदा एक एक अंकार,
1: कई कोट कीने बहु पाप,
0: प्रगटे हुए ब्रह्मा संवाद,
1: ताका अंत न जाने कोए,
0: आपे आप नानक रस होए,
1: कई कोट पार ब्रह्म के दास,
0: किन होवत आत्म प्रगास,
1: कई कोट तत् के वेते,
0: सदा निहारे को नेत्रे,
1: कई कोट नाम रस पीवे,
0: अमर कैसा सदी जीवे,
1: कई कोट नाम गुण गावे,
0: आत्म

0: प्रसाद नानक सच कहे।
1: कब हुए पंडित करे बखियान,
0: कब मोहन तारी लावे ध्यान,
1: कब तट तीर्थ स्नान,
0: कब सिद्ध साधक मुख ज्ञान,
1: कब कीट हस्त पतंग हुए जिया,
0: अनेक जोन भरवे भरमिया,
1: नाना रूप ज्यो सुहागे दिखावे,
0: जो प्रभावे तिवे न जावे,
1: ज्योत सुभावे सोई होए,
0: नानक दूजा अवर न होए,
1: कब साध संगत एह पावे,
0: उस स्थान ते बौर न आवे,
1: अंतर हुए ज्ञान परगास,
0: उस स्थान का नहीं विनाश,
1: मंथन नाम रतैर इक रंग,
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग,
1: ज्यों जा

0: संत के दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते ही,
0: संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन थान प्रस्त होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संत के दुखन काज न लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिल त्रिगुण करमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को चले,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच निचाए,
0: संत दुखी का थाओ को नाहे,
1: नानक संत पावे ताओ भी अत पाए,
0: संत का निंदक महा अतताए,
1: संत का निंदक निकर ना पाए,
0: संत का निंदक मा हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
0: संत का निंदक राय ते हीन,
1: संत का निंदक दुखी आर दीन,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा दोख में दोख,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए भोग,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसी का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लाग गए,
1: संत के दुखी को सब त्यागे,
0: संत का दुखी मां अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जन्म में मरे,
1: संत के दुख ना सुख ते डरे,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
1: नानक संत पावे ता रहे मलाए,
0: संत का दुखी अलबीच ते टूटे,
1: संत का दुखी के काज ना पूछे,
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सांस बिना मृत की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ ना है,
1: आपन भी आके ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर ना रखन हार,
1: नानक संत पावे ता लए वार,
0: संत का दुखी ओ बिल लाए,
1: जो जल विघ्न मचि तड़ पड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पाप की दल नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: जो गुआर तिल खेत माहि धैला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
0: किरत निंदक का तुर ही पया,
1: नानक ज्योत पावे सोई थिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे ना आशा,
1: संत का दुखी चले निराशा,
0: संत के दुख न त्रिष्टे खोए,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: ब्याह कीर्तना मिटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर तिसके ओ करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: रब की उस्तत करो दिन रात,
1: तिसे क्या वो सास ग्रास,
0: सब कुछ वर्ते तिसका किया,
1: जैसा

0: अति प्रभ मन में राख
1: मन की तू प्रीत त्याग
0: दे परे नाही कुछ होए
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: गैर वीर कही सजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा दान दयाल भक्त संत
0: हा तेरे की

0: सकल फल जाके,
1: सर्व दोष सुनिए कर्ता के,
0: राज में राज योग में जोगी,
1: तप में तपीश्वर ग्रस्त में भोगी,
0: ध्याय ध्याय भगत सुख पाया,
1: नानक सिफर पिता के अंत न पाया।

0: नाम के तारे सगल आकार,
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन,
0: नाम के संग उतरे सब सबन,
1: कृपा जित अपने नाम लाए,
0: नान चौथे पद में सो जगत पाए,
1: रूप सत जा का सत स्थान,
0: पुरक सत केवल वरदान,
1: तो सत सत जा की वाणी,
0: सत पुरक सा माए समाणी,
1: सत कर्म जा की रसना सत,
0: मूल सत सत उत्पत,
1: सत करनी निर्मल निर्मली,
0: जिसे बजाए तिसे सब भली,
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई,
0: विश्वास सत नानक गुरु ते पाई,
1: सत वचन साधु उपदेश,
0: सत दे जन जाके हृदय प्रवेश,
1: सत नृत्य बूझे जे कोए,
0: नाम जप ताकी गत होए,
1: आप सत किया सब सत,
0: आपे जाने अपनी मित गत,
1: जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार,
0: अवर ना बूझ कत विचार,
1: करते की मित न जाने किया,
0: नानक जोत सिखावे सो वर्तिया,
1: बिस्मन बिस्म पै बिस्माद,
0: जिन बुझिया ते साया स्वाद,
1: रब के रंग रात जन रहे,
0: गुर के बचन पदार्थ लहे,
1: दाते दो काटन हार,
0: जाके संग

0: सत सत सवतारी
1: आपे गुण आपे गुणकारी
0: शब्द सत सत प्रभ वक्ता
1: सुरत सत सत सुनता
0: भुजन हार को सत सब होय
1: नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप हृदय जिन मानिया
1: तन करावन तन मूल पछानिया
0: जा कर दे विश्वास प्रभ आया
1: ज्ञान तस मन प्रगटाया
0: मैं ते निरपा हुए बसाना
1: जिस ते उपजत

0: संत जना मिल करो विचार
1: एक सिमर नाम आधार
0: अवर उपासा मीत विसार हो
1: चरण कमल में उतारो
0: करण कारण सो प्रभु समर्थ
1: दृढ़ कर गहु नाम हर भक्त
0: एहु तन संचो होवो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस राखो मन माहे
1: सर रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार कुंठ ठुठताव है
1: सो तन हर सेवा ते पावे
0: जिस सो को नित बाछे मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: जिस शोभा को करे पली करनी
1: सासो बाप हर की सरनी
0: अनेक अपावी रोग न जाए
1: रोग मिटे हर आखद लाए
0: सर्व निधान में हर नाम निधान
1: जप

बांध बहुत को किसको गनी तब नरक स्वर्ग को पाकार तब सिर स्वर्ग कहो कित ठाए तब कवन डर कवन कत डरे

चेतर गुप्त किस पूछत लेखा का कौन छुटे कौन बंधन बांधे नानक आपन रूप आपियो परजा तै बिन मैल कहो क्या धोता तै कौन को मान कौन अभिमान तै सब चित लागत को कीस तै किसे भूख कवन तृप्तावे नानक करते का नाही समार तब कवन माई गाम मित्र सुख पाई तै वीर कतीब कहा को चीन तै सगन अपसगन कहा बिचारे तै कौन ठाकर कौन कहिए चेरा नानक अपनी गत जानो आप ऊहा किसे पे आप तमाया तै गुण का नाही परवेश तै कौन चिंत किस लागे चिंता तै कौन कथे कौन सुनने हारा नानक आप उसको आपे पहुंचा तै गुण में कीनो विस्तार प्रभु नर को स्वर्ग बिछावत हमें मोह

0: तब उदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर समन नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमली लाल ये रतन
0: सुत कमावत हो तु उधार
1: आप तरे लोक निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत वाजे
1: सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे
0: टे गोपाल महात के माथे
1: नानक उतरे तिनके साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: करके कृपा प्रभाव मिलाए
0: मिट गए बैर पए सवरेन
1: अमृत नाम साथ संग लेन
0: प्रसन्न पए गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आज जाल पिकारते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: प्रसाद दया प्रभु तारी
1: नानक निभी के पहवारी
0: प्रभु की उसत करो शांत मीत
1: सावधान एकाग्र चित
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निदान
0: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सहल होए
0: सबते उच्च पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: रतन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: हिम शांत रिद्ध नव निद
1: ज्ञान सर्वते सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रगास
1: सबके मद सकल के उदास
0: सुंदर चतुर तत्व का वेत

का वर्णन, ओ शक्ति ओ निराकार, जिसने यह सारा आकार लिया है। बड़े ही प्यारे वचन श्रवण करोगे, ध्यान देवांगे, ते थोड़ा हृदय की वेदना, हृदय का प्यार लगाओ इस बाणी नाल, और भी आनंद आएगा। उच्चियां अवस्थावां दे वचन हन, जिस किसी नूं ऐसा नजर आंदा होवे, जो गुरु नानक कहणगे जह जह देखा तह जोत तुम्हारी, जिसनों किसी ने गुरमुख बड़पागे प्यारे नूं दिसदी होवेगी वो जोत, वो ते खिड़ उठ गए, वो तो खिड़े ही होया है, उसकी खबर मिलती है कि वो है साडे विच, असी उसे दा ही रूप हाँ। सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है। इसनों आओ प्यार नाल गाइए, हृदय दे विचों हृदय की उमंग, हृदय की पीड़ा, हृदय के प्यार नाल दिलों गाइए, तेरे जोज बदाना मेरे साहिबा, तेरे अचरज कौतक हैं, तू हर जल ते थल ते आकाश हर पासे भरपूर है, कितने भी कमी नहीं, हर पासे भरिया पिया है, भरिया पिया है, आपे ही समा रहा है। इसमें कोशिश करिए, सानू भी पता चलेगा कि किन्ने आप संगत इसमें प्यार नाल गाना चाहते हो। एक दो बार आप जी ने मैं बेनती करा, एक बार दस रहे दो बार बोल दें, जे तेरे चोज विदाना मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, अगेन मेरे तेरे चोज विदाना मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, इस तरह गा के असं जो छड़ांगे तो इन्नी जिहड़ा ये हिस्सा है म्यूजिक के तौर पर, इस दे विच मेरिया बच्चिया, मेरिया भैन, मेरिया माँ, उन्हां दी जिहड़ी सुर है उन्हां दे उन्हां नूं माफ़ होंदी है, उन्हां दे उत्ते सहजे ही सुर लग सकेगा। सिर्फ जदों कहना ना मेरे साहिबा, थोड़ा जा उच्ची कहना, बाकी तुसी समझ गए हो मेरा की मतलब है। दो बार दस रहे बोलणगे तो जिस तरह मेरे साइड ते सिंह उच्ची बोलणगे, इदां जिहड़े वीरां दे विच समर्था है, अबिलिटी है, वो उच्ची भी गा सकदे हैं। गा के मैनूं दस नूं भी सानूं भी अंदाजा होएगा कि असी उस तरह गाउणा है जां तुसी बस थोड़े थोड़े जे ल्यूक वॉर्म

सब राजन के राजा, अब फिर आप गरीबन वाजा, फिर एक बार फिर उच्ची वाजा, एक बार कह के समाप्ति होगी फिर सारे ने चुकना।